हर नई सुबह खुली हवा की तरह नए अवसर और नई ऊर्जा लेकर आती है। बीती बातों को पीछे छोड़कर आज को उत्साह और विश्वास के साथ जीना ही सफलता का मार्ग है।

सूरज की पहली किरण यह संदेश देती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहिए। हर नया दिन नई उम्मीद और नई सफलता लेकर आता है।

ईश्वर की भक्ति, अच्छी सोच और निरंतर कर, यही जीवन को सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जाने वाले तीन अमूल्य सूत्र हैं। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपके एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए भारती को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the governing council meeting, governing

0: काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हेलो दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब ऑन एफएम रेनबो 101.9 विद मी योर आरजे लहरी। स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो रही है 10:05 एंड लेट मी आस्क यू समथिंग, हाउ डिड योर मॉर्निंग स्टार्ट टुडे? अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह का क्या है यार, अब तो आधा दिन निकल ही गया। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, इट एक्चुअली मैटर्स। आई मीन द वे आवर मॉर्निंग स्टार्ट एक्चुअली मैटर्स, बिकॉज समटाइम्स द वे आवर मॉर्निंग बिगिन सेट्स द टोन फॉर आवर एंटायर डे। एक छोटी सी स्माइल, एन अनएक्सपेक्टेड मैसेज, ट्रैफिक फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल्सो अम्म पिलचिन ఒక్క మాట అయినా It shows a lots and lots of impact on our entire day. I mean, on our entire day's mood. They can quietly stay with us throughout the day. So today, let's talk about these little morning stories. But before that, let us listen to this wonderful track and then we have a short commercial. Then we'll be back with our morning starts talk. Until then, stay tuned to FM Rainbow 101.9 with me, your Archie Lahiri.

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

वेलकम बैक लिजनर्स, यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब ऑन एफएम रेनबो 101.9 विथ मी योर आरजे लहरी. सो वी वर टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग स्टार्च. रिमाइंडिंग मी ऑफ मॉर्निंग स्टार्च, आई थॉट अबाउट यू नो फ्यू पीपल हैव दिस मॉर्निंग रिचुअल्स. नॉट वेरी यूजफुल बट फॉर दैम इट्स अ सैटिस्फैक्शन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, there are people who wake up

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

movie you watched 100 times. Because happiness isn't always expensive. Sometimes it's just a couch, a favorite movie, a bowl of popcorn, and the people we love. तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मरी स्नैक्स रेडी चेसुकोंडी. टुनाइट प्लान अ गुड मूवी नाइट एंड एस्केप फ्रॉम अ केओस फॉर दिस वीकेंड. स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9 विथ मी योर आर्ची लहरी.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों, 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आपको आज नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील बता देते हैं। सामेईन, प्रोग्राम का आगाज़ होगा खैरत कलाम पाक से, जिसे पेश करेंगे फहद साहब। उसके बाद आप सुनेंगे हर्फ ताबिंदा, तहरीर व पेशकश होगी फहमीदा फहमोश साहबा की। फिर आप डॉक्टर माइक पर में सुनेंगे डॉक्टर राम प्रसाद से ख़ास बातचीत, डॉक्टर साहब वायरल इन्फेक्शन के बारे में अहम जानकारियां हमें बताएंगे। उसके बाद आप सुनेंगे गीत सुरीले गातिजा में खूबसूरत फिल्मी नगमे, और आखिर में प्याम शब के साथ नैरंग इख्तिताम पज़ीर होगा। तहरीर व पेशकश होगी जैदी साहब की। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं करते कलाम पाक से।

0: दोस्तों, अभी आपने फहद साहब की आवाज़ में किरत कलाम पाक सुना और अब पेश है हर्फ ताबिंदा। तहरीर पेशकश है फहमीदा फहमोश साहबा की। लीजिए समाप्त कीजिए।
1: जब कभी दांत में शदीद दर्द होता है तो इंसान बस चाहता है उसे निकाल बाहर करे, और जब वो दांत निकल जाता है तो जुबान बार बार इसी खाली जगह पर जाती है। हालांकि अब वैसा दर्द नहीं रहा, मगर खालीपन अपनी जगह रहता है। दांत निकाल देना ये नहीं कि वो खला भी भर जाए या उसकी कमी महसूस ना हो, बस इंसान आहिस्ता आहिस्ता उस खला का आदि हो जाता है और ये आदत बनने में वक्त लगता है। कई बार दिल में ख्याल आता है क्या वाकई निकालना ज़रूरी था, फिर खुद को यकीन दिलाता कि हाँ ज़रूरी था, क्योंकि वो दर्द और तकलीफ़ की जड़ था। हिकमत की बात यह है, ज़िंदगी में कुछ लोगों या चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, चाहे दिल को कितना ही दुख हो, मगर ये भी हकीकत है कि उनके बगैर जीना सीखना पड़ता है। हालांकि कभी वही लोग खुशी का ज़रिया थे और अब उनके जाने से दिल में बड़ा खला और ज़ख्म रह जाता है, मगर कम से कम अब वो तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ नहीं देते। दुनिया के बहुत से मसाइल ख़त्म हो जाएं अगर हम बराह रास्त एक दूसरे से बात करें, बजाय इधर उधर से एक दूसरे के बारे में सुने। बराह रास्त बातचीत और ईमानदारी से गुफ्तगु बहुत से मसाइल का हल है। जब हम एक दूसरे से खुलकर और दिल से बात करते हैं तो गलत फहमियाँ कम होती हैं, एतमाद बढ़ता है और मसाइल की जड़ कमज़ोर होती हैं। इससे नफ़रत या खौफ की जगह मोहब्बत और समझ बूझ को फ़रोग मिलता है। बहुत से तनाज़ात और मसाइल, चाहे वो माशराती हो या ज़ाती, सिर्फ गुफ्तगु और समझ बूझ से ठीक हो सकते हैं। इस सिलसिले में हमें अपने कम्युनिकेशन के तरीक़े बेहतर बनाने की ज़रूरत है और दूसरे के नुक्ते नज़र को सुनने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। ऐसा माहौल साजगार और अमन पसंद बन सकता है, जिससे दुनिया के बहुत से मसाइल खुद ब खुद कम होने लगेंगे। अगर आप भी ऐसी बदएतमादी और इन हालात से गुजर रहे हैं तो आपको इस पे अमल पैरा करने की अशद ज़रूरत है, बल्कि पहली फुर्सत में करें और कभी भी किसी रिश्ते को ताल्लुक को खुद ना छोड़े।
0: दोस्तों, अभी आपने सुना हर्फ ताबिंदा। तहरीर पेशकश थी फहमीदा फहमोश साहबा की और अब पेश है डॉक्टर माइक पर में डॉक्टर राम प्रसाद से ख़ास बातचीत। डॉक्टर साहब ने हमें वायरल इन्फेक्शन के बारे में अहम जानकारियां दी हैं, तो आइए सुनते हैं ये ख़ास बातचीत।
2: हम अपनी सामयीन को आज डॉक्टर राम प्रसाद साहब से मिलवाने वाले हैं। डॉक्टर साहब अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ कर आए हैं और चाहते हैं कि सुनने वालों को उनकी सेहत के बारे में कुछ खास अहम बातें बताएं। आदाब अर्ज़ डॉक्टर साहब।
3: आदाब अर्ज़।
2: हाँ तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ
3: जी,
2: कि हर तरफ सुनाई देता है कि वायरस वायरस वायरल फीवर हो गया जी, वायरल जी, तो ये वायरल है क्या डॉक्टर साहब?
3: देखिए, वायरल एक इंतहाई छोटा सा जर्म है
2: जी,
3: यानी इतना छोटा और इतनी ख़तरनाक बीमारियां ये इंसान में पैदा करता है।
2: हाँ।
3: आपको हैरत होगी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो आमतौर से हम बैक्टीरिया देखते हैं, वायरस को आप नहीं देख सकते।
2: अच्छा।
3: वायरस बना होता है एक आरएनए और डीएनए के कॉम्बिनेशन से, इसके अतराफ एक प्रोटीन की लेयर होती है और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है। यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। देखिए, इतना छोटा सा जम इतना हंगामा सारी दुनिया में मचा रखा है कि इससे कई किस्म की बीमारियां दिमाग से लेकर पैर तक की होती हैं। ये हर निज़ाम को अफेक्ट करता है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खांसी नज़ला जुकाम
3: जी,
2: ये सब वायरल
3: जी जी, ये ऑर्डिनरली अच्छा। जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़ला ज़ुकाम खांसी
2: हाँ।
3: या हलक में दर्द वगैरह देखते हैं तो हमारे

0: पुराने लोग बोलते थे कि 3 दिन आप वेट करिए, 3 दिन सब्र करिए,
1: हाँ
0: ये खुद ब
1: हाँ
0: खुद चला जाएगा, और वो बिल्कुल सही है।
1: अच्छा
0: लेकिन हकीकत ये है कि ये जो वायरस होता है बहुत कम पावर का रहता है।
1: जी
0: इससे जो ज़्यादा पावर का जो रहेगा, उससे जो फ्लू होगा या इन्फ्लुएंजा होगा, वो
1: जी
0: होगा स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा, जो ख़तरनाक किस्म का हो सकता है।
1: अच्छा
0: तो एक तो वह ऑर्डनरी खांसी जुकाम नज़ला वगैरह, और एक हुआ स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा वगैरह, जो वो भी वायरस से होते हैं, ये भी वायरस से होते हैं। इसमें इंसान की मुदाफ़ती क़ुव्वत बहुत काम करती है। अगर
1: अच्छा
0: जिस्म मजबूत है, सेहत अच्छी है, तो ऐसे सारे वायरस जिस्म से खारिज हो सकते हैं।
1: हाँ
0: इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जिस्मानी क़ुव्वत कम होती है।
1: जी
0: जैसा अब स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, अब
1: जी
0: ये सारे दुनिया में एक एपिडेमिक की तरह से फैला हुआ है।
1: जी हाँ, साथ में डॉक्टर साहब ये डेंगू बुखार भी है ना,
0: जी
1: तो वो भी वायरल
0: जी
1: की वजह से ही
0: जी
1: है।
0: वायरल में खास बात यह है, तो एक तो ये डायरेक्ट इन्फेक्शन करता है,
1: जी
0: इंसान में डायरेक्ट दाखिल होता है,
1: जी
0: और बाज़ वायरल इन्फेक्शन किसी जरिए से होते हैं। तो डेंगू फीवर मच्छर से होता है।
1: जी
0: ये मच्छर एक ख़ास मच्छर होता है जो आमतौर से मलेरिया नहीं फैलाता, बल्कि ये ख़ास डेंगू, चिकनगुनिया और
1: अच्छा
0: येलो फीवर फैलाता है।
1: अच्छा
0: इस मच्छर को हम बोलते हैं ईडिस इजिप्टाई, और इसकी खसूसियत यह है कि मलेरिया का मच्छर जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है वो रात में काटता है।
1: हाँ
0: देखिए मच्छरों में भी क्या कमाल है, और
1: जी
0: ये मच्छर जो है दिन में काटता है।
1: जी
0: तो अब हम लोग मरीजों को ये बोल रहे हैं, जनरल पॉपुलेशन में ये बोल रहे हैं कि भाई दिन में भी आप जो है ऐसा कोई बंदोबस्त करिए, जैसा कोई कॉयल लगा लीजिए या कोई इलेक्ट्रिकल मैनुअल लगाइए,
1: जी
0: ताकि दिन में भी आपको मच्छर ना काटे। तो मच्छर से हुआ एडीसी जिप्टाई, डेंगू
1: जी
0: फीवर और येलो फीवर, जो खतरनाक किस्म के बुखार होते हैं।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्वाइन फ्लू भी यही चीज़ है?
0: स्वाइन फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा की एक बहुत ही खतरनाक शक्ल है।
1: अच्छा
0: देखिए इसमें खसूसी बात यह है कि
1: जी
0: दरअसल ये स्वाइन में पाया जाता है। स्वाइन यानी आमतौर से जो हम खिजर कहते हैं, वो क्या कहते हैं,
1: जी
0: सुअर कहते हैं
1: जी
0: या
1: हाँ
0: पिक्स कहते हैं, उसमें पाया जाता है। लेकिन बाई चांस ये किसी ना किसी तरीके से मेक्सिको में इंसानी उसमें जरिए में आ गया। तो
1: अच्छा
0: ये इंसान जब मेक्सिको से नॉर्थ इंडिया में मुंतकिल हुए, तो सबसे पहले स्वाइन फ्लू नॉर्थ इंडिया में और चाइना वगैरह मुकामात पे हुआ। अब तो
1: अच्छा
0: हमारे हिंदुस्तान में भी स्वाइन फ्लू आ गया है। तो
1: हाँ
0: स्वाइन फ्लू दरअसल इंसान का वायरस नहीं है, वो सुअर या पिक्स का है जो
1: जी
0: इसमें दाखिल होता है। इसकी खसूसियत यह है कि बिल्कुल इन्फ्लुएंजा की तरह रहता है, खांसी जुकाम नज़ला,
1: हाँ
0: जिस्म में दर्द और हाई टेम्परेचर। मगर
1: अच्छा
0: इसमें खसूसी बात यह है कि एक मरतबा स्वाइन फ्लू हुआ तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। और ये और एक ख़ास बात यह है कि इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होता है, जो आमतौर से इन्फ्लुएंजा में नहीं होती।
1: हाँ
0: गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब खय और दस्त आना।
1: अच्छा
0: तो फ़ौरन से इसकी तशखीस होना, फ़ौरन से इसका इलाज होना, वरना ये छोटी उम्रों में, जैसा 4-5 साल उम्र से लेके बड़ी उम्र तक, मतलब जवानी तक के 20-22 साल तक के, ये
1: जी
0: जानलेवा भी हो सकता है,
1: अरे
0: और
1: वाह,
0: ये बड़ी उम्र में बहुत कम पाया जाता है।
1: अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर को समझ में कैसा आएगा
0: हाँ,
1: कि
0: आपने बहुत
1: ये
0: अच्छा सवाल किया। तो
1: जी
0: इसकी तशखीस होती है, इसके
1: जी
0: टेस्ट होते हैं, स्वाइन फ्लू टेस्ट। वो टेस्ट
1: अच्छा
0: में अगर ये पॉजिटिव आया तो समझो स्वाइन फ्लू है, वरना हम
1: हाँ
0: समझें कि ये बिल्कुल ही ऑर्डनरी इन्फ्लुएंजा है। तो
1: अच्छा
0: इसके गवर्नमेंट ने चंद मुकामात रखे हैं, जैसा नारायणगढ़ का सरकारी दवाखाना है,
1: जी
0: किंग कोटी का सरकारी दवाखाना है,
1: जी
0: एरागढ़ का सरकारी चेस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप रुजू हो सकते हैं, भाई मुझे इन्फ्लुएंजा फीवर जैसा दिख रहा है, लेकिन आप चाहो तो मेरा टेस्ट करके, अगर स्वाइन फ्लू हो तो मुझे और मेरे तमाम बिरादरी को बचाएं, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शस होता है, और
1: जी
0: ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी एक दूसरे से बात करने से, और हाथ से भी होता है। जैसा
1: अच्छा
0: हाथ अगर किसी से मिलाएं जो स्वाइन फ्लू के पेशेंट से,
1: ओ
0: तो हाथ से भी जाता है। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि भाई तुम दस्ती रखो, और जो
1: हाँ
0: पेशेंट होता है उसको कहते हैं कि भाई नकाब लगाओ, या आप उसके ऊपर एक कवर कर लीजिए, जैसा
1: हाँ
0: ऑपरेशन के वक्त में हम लोग ये लगाते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: और हाथ पैर भी जो है आप साफ़ सुथरे रखें, और बार बार अपने हाथ धोएं।
1: जी अगर डॉक्टर साहब हाथ किसी से मिलाएं और इस किस्म के कोई परेशानी आ गई, तो फिर तो यानी बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो
0: नहीं तो मैं
1: जाएगी
0: आपसे अर्ज किया ना कि आप किसी ऐसे शक है कि आपको इस शख्स को स्वाइन फ्लू है, तो आप अपना हाथ धो लिया कीजिए।
1: ये। अच्छा तो ठीक है, फिर और एक बात ये डॉक्टर साहब
0: जी
1: कि ये जो आपने कहा कि मच्छर से ये हो जाता है,
0: जी
1: उसके
0: मच्छर से डेंगू
1: बाद
0: भी होता है।
1: अच्छा डेंगू भी होता
0: जी
1: है, तो डॉक्टर साहब मैंने सुना कि डेंगू बुखार बहुत ही ज्यादा यानी मुसीबत का कारण होता है।
0: देखिए, जैसा चिकनगुनिया होता है,
1: जी
0: जैसा स्वाइन फ्लू है खतरनाक, चिकनगुनिया और डेंगू एडिस इजिप्टाई मच्छर से ही होता है।
1: अच्छा
0: लेकिन चिकनगुनिया में खास बात यह है कि शदीद बुखार एकाएक, यानी कल आपसे दावत में कोई शख्स मिला,
1: जी
0: दूसरे दिन बोलेगा साहब मेरे पूरे जोड़ों में दर्द है, मैं उठ नहीं सकता, मैं हाथ पैर नहीं उठा सकता, क्या मुझे फालिज हो गया, गौर से देखिए। तो हम ऐसा समझते हैं कि कोई दूसरा आदमी समझेगा अरे ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हकीकत ये है

0: चिकनगुनिया फीवर में बहुत तेज बुखार और बहुत जॉइंट्स में दर्द होता है।
1: अच्छा
0: इसी तरह, माफ करना, इसी
1: हाँ,
0: तरह डेंगू में भी इसी तरह का होता है, लेकिन
1: हाँ
0: डेंगू की तशखीस के लिए हम ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं।
1: जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही
0: जी
1: थी कि एक जो ने बुखार है
0: जी
1: वो ज्यादा खतरनाक होता है,
0: जी
1: तो वो कौन सा है?
0: वो है डेंगू।
1: डेंगू,
0: जी
1: अच्छा, जिसमें पेशेंट मरने के करीब हो जाता
0: उसकी
1: है।
0: उसकी वजह क्या है
1: जी
0: कि इसमें एक प्लेटलेट जो इंसान को खुदा ने दिया है,
1: जी
0: जो खून मुंजमद होता है, यानी अगर कोई
1: हाँ,
0: अपना हाथ अगर कट जाए
1: जी,
0: या
1: जी,
0: पत्ती से बाय चांस कट जाए तो
1: जी,
0: खून मुंजमद होके वो बंद हो जाता है, लेकिन इसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं
1: हाँ,
0: तो खून के मुंजमद होने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो उम्र छोटी उम्र में बच्चे खुसूसन, उसको
1: जी,
0: हम लोग हेमरेजिक डेंगू कहते हैं,
1: अच्छा,
0: यानी नाक से, मुंह से, दांतों से, जिस्म पे छोटे छोटे छोटे खून के धब्बे आ जाते हैं, तो ये
1: हाँ,
0: डेंगू फीवर हुआ, ये खतरनाक होता है।
1: अच्छा। तो डॉक्टर साहब, फिर ये जो आपने कहा कि जिस्म पे छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं,
0: जी
1: तो ये क्या स्मॉल पॉक्स वगैरह
0: हाँ,
1: की टाइप है या
0: देखिए
1: क्या?
0: बहुत सारी ये जो बीमारियां होती हैं
1: जी
0: वायरस की, उसको
1: जी
0: एक्जेंथमेटस कहते हैं।
1: जी
0: एक्जेंथमेटस मतलब जिस्म के ऊपर धब्बे आना।
1: जी
0: तो बचपन में आप छोटे बच्चों में देखते हैं कि खसरा या मीजल्स
1: हाँ
0: या आम जबान में गोबरी कहते हैं,
1: जी हाँ
0: ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, यानी आता है और 3-4 दिन, 8-10 दिन में वो ख़त्म हो जाता है,
1: हाँ
0: और अगर रेजिस्टेंस कम रहा तो निमोनिया वगैरह भी हो सकता है। उसी
1: अच्छा
0: तरह चिकन पॉक्स है,
1: जी
0: तो
1: हाँ,
0: चिकन पॉक्स यानी कंकर पत्थर,
1: ये
0: ये
1: तो डॉक्टर
0: जी
1: साहब अब खत्म हो रही है शायद
0: नहीं,
1: या फर्स्ट?
0: देखिए
1: हाँ
0: चिकन पॉक्स भी खत्म हो रही है क्योंकि उसका भी इलाज है और उसका वैक्सीन भी है। चिकन
1: जी
0: पॉक्स का वैक्सीन है, और
1: हाँ
0: उसी तरह से एक और चीज होती है स्मॉल पॉक्स।
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: स्मॉल पॉक्स तो 1980 में वर्ल्ड से गायब हो गया है,
1: जी
0: तो हमारे लिए खुशकिस्मती है। और साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट जो टीका लगाए थे, बनवाए थे,
1: जी
0: स्मॉल पॉक्स का टीका आपने भी लिया, मैंने भी लिया,
1: हाँ
0: और 1980 तक के जितने लोग टीके लिए, उसके
1: जी
0: बाद से हमारे को शुक्र है अल्लाह का कि स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो गया।
1: जी
0: तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब भी कोई वबा फैलती है, फैलो या ना फैलो, तो
1: जी
0: आप बराबर अपने वैक्सीन्स लेते रहें। जैसा कि पोलियो वैक्सीन है, तो
1: जी
0: पोलियो के ओरल ड्रॉप्स हैं, सारे टीवी पे और रेडियो पे और इसमें अखबारों में इश्तिहार देते हैं कि अपने बच्चों को ले जाओ, सिर्फ 2 बूंद का सवाल है।
1: जी हाँ,
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब ये पोलियो भी क्या वायरल है?
0: जी हाँ, मैं जो आज गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, चूंकि
1: जी
0: आपने टॉपिक मुझे वायरल इन्फेक्शन की दी है, तो पोलियो भी वायरल इन्फेक्शन है। इसमें ये न्यूरोट्रोपिक वायरस है, ये
1: जी
0: सेंसरी नर्व्स से और मोटर नर्व से खुसूसन स्पाइनल कार्ड तक जाता है, और इससे फौरन से मरीज को जो है फ्लैक्सिड पैरालिसिस, यानी दो पैर गिर जाते हैं, कभी हाथ गिर जाता है, कभी
1: हाँ
0: चेहरा
1: हाँ
0: जाता है। और इतनी ये खतरनाक बीमारी है कि एक मरतबा पोलियो किसी बच्चे को हो गया तो
1: जी
0: उम्र भर के लिए उसको मुसीबत है, ताकि कि आप उसका फौरन से इलाज ना करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ों को भी होता है क्या?
0: बड़ों को बहुत कम होता है, उसकी वजह है कि हर्ड इम्यूनिटी, यानी छोटी छोटी इम्यूनिटी हमको सोसाइटी में लगते रहती, तो
1: जी
0: इसलिए हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के बचाव के लिए तो जरूर आपको पोलियो ड्रॉप्स डालना है, और खुसूसन ऐसे फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो बाहर जाना चाहते हैं, जैसे
1: जी
0: स्वाइन फ्लू है, हज को
1: जी
0: जाते हैं लोग, बाहर तफरी को जाते हैं, वर्ल्ड फिरते हैं, टूरिस्ट हैं, इन लोगों को तो ये ड्रॉप्स और ये स्वाइन फ्लू का टीका तो जरूर लेना चाहिए।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, और एक बात ये पूछना चाह रही थी
0: जी
1: मैं कि आपने कहा कि सर से पैर तक,
0: जी
1: तो मतलब सर से पैर तक तो क्या
0: ब्रेन,
1: दिमाग में, ब्रेन में भी आ
0: जी
1: जाता है वायरस?
0: आपने सुना होगा, चंद साल पहले नेल्लूर में एक वबा चली,
1: जी
0: वो वबा फिर हैदराबाद में आई, उसको हम
1: जी
0: लोग जैपनीज इनकेफ्लाइटिस कहते हैं। तो
1: जी
0: वो दिमागी बुखार होता है, ये भी जानलेवा होता है, जब तक कि आप इलाज ना हो तो लोग, कई लोग एपिडेमिक की तरह सौ से लोग मरते हैं, तो वो जैपनीज इनकेफ्लाइटिस है, ये भी बच्चों में पाया जाता है।
1: अच्छा, तो ये क्या बड़ों में नहीं होता?
0: बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा अर्ज किया, बड़ों की मुदाफ़ती क़ुव्वत ज़्यादा रहती है, इसलिए
1: जी
0: कम पाया जाता
1: तो
0: है।
1: डॉक्टर साहब ये समझेंगे कैसा कि ब्रेन फीवर है?
0: वो तो टेस्ट के बाद ही, लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ही हमको पता चलेगा, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन,
1: जी
0: जब
1: जी
0: हम क्लिनिकल डॉक्टर्स के जो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो तजुर्बेकार डॉक्टर्स हैं, या
1: जी
0: आरएमपी और गांव के डॉक्टर्स नहीं, जो पढ़े लिखे जो इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, फ़ौरन पहचान लेते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मच्छर से वायरल फीवर आता है,
0: जी
1: तो क्या घर में जिस तरह लोग पालतू जानवर रखते हैं, जैसा
0: जी
1: कुत्ता है, बिल्ली है या बर्ड्स हैं, वो उनसे भी आता है क्या अपने?
0: मुझे अच्छा लगा आपके क्वेश्चन से कि आप मच्छर से कहाँ चले गए।
1: जी
0: बिल्कुल आपने सही सवाल किया, और बिल्कुल आपने बजा फरमाया आज के सेशन में।
1: जी
0: देखिए कुत्ता और बिल्ली, खुसूसन कुत्ता, बिल्ली से
1: जी
0: तो कम,
1: हाँ
0: इससे होता है रेबीज। आपने
1: अच्छा,
0: सुना होगा कि कुत्ते काटे का मरीज बचता
1: ओ
0: नहीं,
1: डॉक्टर
0: ये
1: साहब
0: 100% उसकी डेथ होती है।
1: वो तो बड़ी
0: जी
1: परेशानी
0: हाँ,
1: की
0: तो
1: बात है फिर।
0: जी रेबीज जो है, रेबिड डॉग्स जो होते हैं,
1: जी
0: स्ट्रीट डॉग्स,
1: जी
0: इसलिए गवर्नमेंट की एक चलती है ना कि

0: अपने अपने पूरे कुत्तों को ले जाके रजिस्टर कराओ वेटरनरी हॉस्पिटल में,
1: जी
0: उनको
1: हाँ
0: बिल्ला लगाओ बल्दिया की तरफ से, और उनको जो है जैसा तरीका होता है प्रोसीजर, उसको रेबीज वैक्सीन देना चाहिए। अब
1: जी
0: स्ट्रीट डॉग्स हैं, लोग ऐसी गलियों में छोड़ देते हैं, कभी गलती से बच्चों को या बड़ों को पालता है, तो ये न्यूरोट्रोपिक वायरस है जो काटने की जगह से लेके स्पाइनल कार्ड तक जाता है। और आप देखिए, अगर कोई कुत्ते काटे के मरीज को, तो आप
1: जी
0: बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जैसे उसके करीब में पानी का ग्लास लाया जाता है, तो वो एक्चुअली चिल्लाने लगता है, तो लोग कहते हैं कुत्ते की तरह चिल्ला रहा। उसकी मतलब वजह यह है कि हाइड्रोफोबिया, यानी पानी देखते उन्हें उछलने कूदने लगता है और इतना परेशान हो जाता है, तो
1: जी
0: आखिरकार इसको ले आके क्वारंटीन करते हैं। क्वारंटीन मतलब उसको सेपरेट करना है।
1: जी
0: उसके लिए हैदराबाद में एक फीवर हॉस्पिटल है, तो वहां पे आप शरीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए,
1: जी
0: कुत्ते काटे का इलाज Day 1, Day 0, यानी
1: जी
0: जिस दिन काटा उसी वक्त उसी दिन से शुरू करके 5 से 7 इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो 100% नहीं तो 90% क्यूरेबल है। अगर ये
1: जी
0: न लें तो 100% डेथ होती है। अगर एक मरतबा रेबीज हुआ तो किसी सूरत से इंसान आज की दुनिया में नहीं बच सकता।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना कि वो कुत्ता जिसको काटता है
0: जी
1: उसको मतलब कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे ऐसा नजर आते हैं, क्या
0: जी
1: ये सच है डॉक्टर साहब? ऐसा क्यों है?
0: ऐसा नहीं है, एक दीवानगी की हालत रहती है उस कुत्ते को,
1: जी
0: इसीलिए तो कहते हैं कि दीवाना कुत्ता काटा क्या। तो
1: अच्छा
0: उसका
1: अच्छा
0: मतलब
1: अच्छा
0: ये होता है कि कुत्ता इराटिक बिहेवियर करता है,
1: हाँ हाँ
0: भागता है, इधर जाता है उधर जाता है,
1: हाँ
0: उसे हम समझ जाते हैं कि इसको रेबीज होगा। और उसके लॉब में इन्फेक्शन होता, उसके काटे में इन्फेक्शन होता, और जहाँ पे वो काटता है अगर वो नर्व्स के करीब हो, जैसा नर्व्स यानी स्पाइनल कॉर्ड, और
1: जी
0: खसूसा दिमाग के करीब हो, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
1: अच्छा, तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इन सब चीज़ों को तो मतलब प्रॉब्लम आती है,
0: जी
1: लेकिन मम्स जो होते हैं
0: जी
1: क्या वो भी वायरल है? मम्स जो आती
0: आप
1: हैं,
0: एकदम खतरनाक बीमारी से बहुत मामूली मर्ज की तरफ
1: जी
0: मुतवज्जे हुए हैं।
1: जी
0: मुझे
1: हाँ
0: अच्छा लग रहा है कि आप कुछ इस मामले में शुद्बुद रखते हैं, कुछ मालूम रखते जरूर हैं, या आपके सामने कुछ घरेलू केसेस आते होंगे।
1: जी
0: देखिए,
1: हाँ
0: मम्स जो है पैरोटिड ग्लैंड्स का है,
1: जी
0: हलक के आजू बाजू हमको खुदा ने थूक के ग्लैंड दिए हैं। तो
1: जी
0: मम्स जो है ये पैरोटिड ग्लैंड्स दोनों तरफ होते हैं कल्ले के, तो वहाँ होते हैं। उसकी तशखीस ये है कि कान का जो लोब होता है वो चढ़ जाता है, और यहाँ पे काफ़ी सूजन आती है। वो
1: हाँ
0: एक तरफ भी हो सकती है, दो तरफ भी हो सकती है, लेकिन
1: अच्छा
0: इसकी खसूसियत ये है कि इसमें बुखार आता है, दर्द होता है, न गले के अंदर नहीं होता, गले के बाहर कान के नीचे होता है। लेकिन
1: जी
0: इसमें मर्दों में टेस्टिकल्स यानी नीचे के हिस्से में भी होते हैं, पोतों में भी, और औरतों में ओवरीज में भी इन्फेक्शन होता है, इसलिए कभी वो पेट के दर्द से भी और नीचे पेट के दर्द से भी आ सकते हैं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर ये मतलब इसका इलाज क्या है?
0: मम्स का
1: यानी
0: इलाज है सिम्टोमेटिक इलाज कीजिए, ये कोई जानलेवा भी नहीं रहता, और आखिरकार ये ठीक हो जाता
1: नहीं डॉक्टर साहब, सांस लेने में जो
0: है। नहीं,
1: परेशानी होती
0: सांस
1: है
0: लेने में
1: उससे?
0: परेशानी मम्स से नहीं होती, वो
1: जी
0: टॉन्सिलाइटिस से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
1: अच्छा, तो मतलब कोई ऐसी कोई परेशान
0: परेशानी की
1: होने
0: बात
1: की
0: नहीं है।
1: बात
0: जी
1: नहीं। अच्छा, तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात ये पूछना चाह रही
0: जी
1: थी मैं
0: जरूर
1: कि ये एड्स जो आजकल सुना जा रहा है कि
0: जी
1: एड्स हो गया,
0: जी
1: एड्स, तो क्या ये भी वायरल है?
0: जी हाँ, आपने गुफ्तगू का मोड़ बहुत खतरनाक किया है।
1: जी
0: एड्स एक जानलेवा मर्ज है एक लिहाज से, कि
1: जी
0: अगर आप उसका इलाज शुरू शुरू शुरू शुरू में ही नहीं करें, तो
1: जी
0: किसी सूरत से मरीज कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन से मरता है, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन कहते हैं।
1: जी
0: देखिए, एड्स है अक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशेंसी सिंड्रोम, और ये एक छोटा सा वायरस है जो ऑर्डिनरी अगर कहीं पड़ा हो कहीं भी तो इन्फेक्शन नहीं करेगा, लेकिन एक मरतबा इंसान के सेल में अगर दाखिल हो गया तो
1: जी
0: एक हंगामा बपा कर देता है। उसकी वजह ये है कि एड्स का ये 3-4 तरीक़ों से इंसान में दाखिल होता है।
1: जी
0: जैसा कि ड्रग यूज़र्स हैं जो
1: हाँ
0: हैबिचुअल ड्रग्स लेते
1: जी
0: हैं, मुख्तलिफ इंजेक्शन लेते हैं, एक ही सिरिंज दूसरे को देते हैं, दूसरे ही सिरिंज तीसरे को देते हैं, तो ये सिरिंज से भी होता है। ब्लड
1: जी
0: ट्रांसफ्यूजन में अगर ठीक तरीके से एड्स का स्क्रीनिंग नहीं कर लिए, एड्स का अगर टेस्ट करके ब्लड न दे जाए, तो बेचारे मासूम जिसको ब्लड मिला उसको
1: जी
0: एड्स हो सकता है। और तीसरा जो अहम है वो तो सेक्स है, सेक्स की वजह से भी, केयरफुल सेक्स ना किया जाए तो उससे भी एड्स होता है।
1: जी
0: जी
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात पूछना चाह
0: जी
1: रही थी मैं,
0: जी
1: वो ये कि जॉन्डिस,
0: जी
1: यानी जॉन्डिस होते ही वो लोग परेशान हो जाते
0: जी
1: हैं कि सफेद हुआ
0: वो पीला
1: पीला
0: हुआ जी
1: हुआ, तो अब ये सफेद और
0: उस
1: पीला
0: जी
1: क्या चीज है
0: देखिए,
1: ये?
0: उसकी वजह ये है, सफ़ेद पीला तो कुछ सफ़ेद तो कोई होता नहीं, सफ़ेद तो खैर खून की कमी से भी आंखें सफ़ेद नज़र आती हैं, और
1: जी
0: जो पीला होता है हकीकत में वो जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस भी वायरस इन्फेक्शन है, वायरस ए, वायरस बी और वायरस सी।
1: जी
0: ये भी हेपेटाइटिस उसी से होता है वायरस से, और इसके इलाज के लिए बाकायदा इलाज होता है, सिम्टोमेटिक भी होता है, स्पेसिफिक भी होता है। यानी बाकायदा इलाज होगा मरीज के लिए और उसके सपोर्ट

0: के लिए भी, लेकिन लोग जो आजकल, मैं खुसूसन चूंकि ये प्रोग्राम रेडियो का है, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि गैर जरूरी है जड़ी बूटी और आंख में दवा लगाना, वो फला जगह दवा दी जाती है, प्लीज वो मत करिए, उससे आप अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं। अच्छे एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन में या अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलिए, तो जॉन्डिस का ट्रीटमेंट 100% है, लेकिन अगर लेट हो गया तो फिर वो हेपेटाइटिस परमानेंट हो जाएगी और एड्स उसके जरासीम दिमाग तक जाके फिर वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा, डेथ भी हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, बाज लोग ये बोलते हैं
0: जी
1: कि डॉक्टर मतलब एलोपैथिक में
0: जी
1: इसका कोई दवाई है?
0: 100% इसकी दवा है, मैं उसकी बराबर वकालत करूंगा और यह अर्ज करूंगा कि जॉन्डिस का ट्रीटमेंट है और जो ट्रीटमेंट जो पुराने नुस्खे और फला फला हैं वो हम जानते भी नहीं और हम उसकी राय देते भी नहीं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मतलब जॉन्डिस होता

0: हम उसकी राय देते भी नहीं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मतलब जॉन्डिस होता है जैसे
0: जी
1: आपने कहा,
0: जी
1: तो ये मरने तक, मतलब मरने की हालत तक क्यों पहुंचाता है
0: उसकी वजह
1: पेशेंट
0: यह है
1: को?
0: कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का मतलब आंखें पीली, देखते नहीं, पेशाब का इम्तिहान नहीं कराते, खून का इम्तिहान नहीं कराते, तो उसकी वजह से भी होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बच्चा है जिसको मतलब जॉन्डिस, या आपने कहा कि हेपेटाइट बी ए बी
0: जी
1: जो है,
0: जी
1: तो वो उसकी तबीयत ठीक होती ही नहीं, ये
0: वो
1: क्यों?
0: हेपेटाइटिस बी है। वो
1: अच्छा
0: तो हेपेटाइटिस बी में होता है कि लो ग्रेड टेम्परेचर रहता, वो एक कैंसर की तरह होता, वो लीवर को ख़राब करते रहता। लेकिन उसका भी इलाज है, थोड़ा कॉस्टली इलाज है। उसको इंटरफेरॉन वगैरह दवा दी जाती है इंस्टीट्यूशन में रख के, हॉस्पिटल में रख के।
1: जी
0: लेकिन वो मरीज़ ऐसे होते हैं HbAg पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं,
1: जी
0: आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि उसमें सफ़ेद इरखान होता है, नज़र तो नहीं आता आँखों में,
1: हाँ,
0: लेकिन ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आता। उसकी वजह इसमें लो ग्रेड टेम्परेचर रहता, और ऐसे लोगों को हम लोग ट्रैवलिंग के लिए भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि दूसरों को लगा सकते हैं।
1: अच्छा तो वो भी मतलब लग जाता है
0: लगता है,
1: अगर?
0: लगता है, ये जितने भी जॉन्डिस हैं एक से दूसरे को लगते हैं। जी
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो लगता है, तो हाथ मिलाने से लगता
0: हाथ
1: है?
0: मिलाने से लगता है, उनके एक्सक्रीटा है,
1: अच्छा,
0: उसकी इजाबत के जरिए, उसके पेशाब के जरिए, उसके खून के जरिए फैलता
1: ओह
0: है।
1: अच्छा,
0: इंजेक्शन से भी ये फैलता है। एक इंजेक्शन से अगर सिरिंज डिस्पोजेबल ना यूज़ किया जाए तो दूसरे को लग सकता है।
1: हाँ, तो फिर डॉक्टर साहब इसके लिए क्या मतलब, आपने कहा कि
0: उसका
1: जिगर का प्रॉब्लम है
0: जी
1: तो जिगर का इलाज करवाना चाहिए?
0: जाहिर है, फिर लीवर का ऑन दी वॉल इलाज करना। देखिए,
1: जी
0: अल्लाह ने हमको जिगर एक ही दिया है,
1: जी हाँ
0: कल्ब एक ही दिया है,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: हम कहते हैं कि कम से कम दो गुर्दे हैं, दो आंखें हैं, तो कल्ब और जिगर एक है, तो उसकी हिफाजत कीजिए। जिगर को जिगर लगा के देखिए।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये सब वायरल
0: इन्फेक्शंस पे आते हैं।
1: इन्फेक्शंस के लिए
0: जी
1: है।
0: हाँ
1: तो मैं और ये जानना चाह रही थी
0: जी
1: कि अब इसके साथ साथ
0: जी
1: हमारी जो जिल्द है
0: जी
1: वो जिल्द से भी मतलब वायरल
0: जी हाँ, जिल्द में
1: पहुंचता
0: जो
1: है?
0: वायरल इन्फेक्शन होते, सबसे ऑर्डिनरी इन्फेक्शन जो है वो वार्ट्स हैं,
1: जी
0: WARTS, वार्ट्स, यानी छोटे छोटे ग्रोथ्स आते हैं,
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: प्लांटर एरिया, मतलब पैर में भी होते हैं, जिस्म में भी होते हैं, बाद लोगों को चेहरे पे भी होते हैं, बाद
1: हाँ
0: लोगों को पीठ पे भी होते हैं, वार्ट्स हैं। तो
1: हाँ
0: वार्ट्स भी वायरल इन्फेक्शन है, लो आई मीन वेरुलेंट है, यानी कम से कम इसका नुकसान होता है। इसलिए खाली ये बदनुमा ही पैदा करता, इसको आप कोई तरीके से, केमिकल से या कॉटरी से निकाल सकते हैं। अब जिल्द में पाया जाता है, देखिए हर्पिस, हर्पिस
1: अच्छा
0: आप देखे होंगे कि बाद मरतबा बाज पेशेंट्स को एक खिते से छोटे छोटे कंकर पत्थर की तरह छाले आते हैं। तो ये है न्यूरोट्रोपिक, तो जो सेंसरी नर्व्स हैं जो पेन को कबूल करते हैं, वो
1: जी
0: शुरू होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से और ख़त्म होते हैं या स्टर्नम में सामने। तो
1: जी
0: बराबर वो वायरल इन्फेक्शन नर्व से शुरू होकर नर्व के ख़त्म पे ख़त्म होता है। और इसमें दो बातें होती हैं, तीन बातें होती हैं। एक तो ये कि प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, यानी छाले आने से पहले शदीद बुखार आता है, हल्का सा दर्द होता है,
1: जी
0: छाले आने के बाद में शदीद दर्द होता है, और अच्छा होने के बाद भी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया होता है, जो कई कभी कई हफ्ते और कई महीनों तक चलता है। ये
1: ओहो
0: भी वायरस इन्फेक्शन है। आपने देखा हो कि मरीजों को जो है पहले चेस्ट पेन से आते हैं,
1: हाँ
0: अरे वो
1: हाँ
0: खाली दर्द है करके हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद वो छालों से आता है।
1: हाँ
0: तो ये भी
1: हाँ
0: खतरनाक मर्ज है।
1: तो ये आता किससे है डॉक्टर
0: ये भी
1: साहब?
0: वायरस है जो न्यूरोट्रोपिक है, वो नर्व
1: अच्छा
0: को पिकअप करता है और
1: अच्छा
0: सिर्फ नर्व को इन्फेक्ट करता है,
1: अच्छा
0: नस
1: अच्छा
0: को।
1: अच्छा तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं एक बात ये बोलूंगी
0: जी
1: कि
0: जरूर
1: हमारे जो सुनने वाले हैं
0: जी
1: उनको आप ये बताइएगा
0: जी
1: कि ये जितना भी वायरल इन्फेक्शन है
0: जी
1: और ये जो कुछ भी मतलब आजकल पूरे माहौल में मौजूद है,
0: जी
1: तो इससे हम बचें किस तरह?
0: देखिए, हर वायरल इन्फेक्शन का कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी वैक्सीन पाया जाता है। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी या तो आ रहा है या आने वाला है,
1: जी
0: चंद ही हफ्तों में आ जाएगा इंडिया में, लेकिन अमेरिका में तो यूज़ हो रहा है। सबसे पहले वैक्सीन लें, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इतना अच्छा चला कि वो दुनिया से गायब हो गया, इरेडिकेट हो गया।
1: जी
0: हम चाहते हैं पोलियो भी हो जाए,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: पोलियो का वैक्सीन भी दिया जाए। हर चीज़ का वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स का, पोलियो का, और चिकन पॉक्स का, हर चीज़ का वैक्सीन है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मीडिया,
1: जी
0: खुसूसन रेडियो और टीवी और पेपर्स और जनरल पैम्फलेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ जहाँ पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, इनको
1: जी
0: गौर से देखिए और अच्छे इंस्टीट्यूशन जाइए। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हर बीमारी, हर वायरल इन्फेक्शन का वैक्सीन लगाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो आप
1: जी
0: उसको फॉलो करिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये सब तो बताया,
0: जी
1: लेकिन मतलब इसमें गिज़ा
0: जी
1: या मतलब खाने में
0: जी
1: किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए?
0: देखिए, गिज़ा की एहतियात ये करनी है कि
1: जी
0: बहुत सारी चीज़ें जो है गिज़ा के किसी ना किसी तरीके से इजाबत या स्टूल से कांटेक्ट में आ जाते हैं।
1: जी

0: तो उससे हो जाएगा पोलियो,
1: जी
0: उससे हो जाएगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और
1: अच्छा
0: पानी के जरिए, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ईडिस यूटाई मच्छर जो है पानी में पाया जाता है, तो पानी में एक तो ठहरा मत रहने दीजिए घरों में
1: जी
0: और एयर कूलर्स में और घड़ों में, सूखी बोली में थोड़ा पानी रह जाता है, अतराफ
1: जी
0: में जो गंदा पानी रहता है उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। और
1: जी
0: ग़िज़ा अच्छी से अच्छी लेना चाहिए, अच्छे विटामिन्स लेना चाहिए, ज़रा सी बीमारी पे डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। आपका अगर रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहा तो आप बहुत सारे वायरस को आप ख़त्म कर सकते हैं अपनी मुदाफ़ती क़ुव्वत से।
1: जी तो फिर डॉक्टर साहब इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे सुनने वालों को?
0: जी देखिए, मैं एक ही बात अर्ज़ करूँगा
1: जी
0: कि वायरल इन्फेक्शंस, सिर्फ एक ही इन्फेक्शन है आज की दुनिया में
1: जी
0: जो ख़तरनाक है, वो है एड्स।
1: जी
0: एड्स के लिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर सुनने वाले सुने तो अपने ख़ानदानी लोगों से ईमानदारी से रहें, गैर जगहों पर न जाएं, तो
1: जी
0: एड्स से बच सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो बच्चों में वायरल इन्फेक्शन है तो उनका फ़र्ज़ है कि शुरू पैदा होते ही जो टीके लगाए जाते हैं या पोलियो दिया जाते हैं उनके तरफ तवज्जो करें। नंबर
1: जी
0: थ्री, अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें और अपने आप को अवेयरनेस रखें कि क्या क्या वायरल इन्फेक्शन दुनिया में पाए जाते हैं, उससे कुछ ना कुछ अवेयरनेस पैदा करना चाहिए।
1: जी तो फिर डॉक्टर साहब हम अपने सुनने वालों से इजाज़त लेते हैं।
0: जी
1: आपने अपनी सारी मसरूफियात के बावजूद
0: जी
1: आप यहाँ आए
0: जी
1: और हमारे सुनने वालों को बहुत ही अच्छी अच्छी काम की बातें बताई आपने,
0: जी
1: तो इसके लिए सुनने वालों की जानिब से
0: जी
1: मैं आपका शुक्रिया अदा
0: जी
1: करती
0: जी
1: हूँ।
0: शुक्रिया,
1: आदाबर सर।
0: आदाब।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर राम प्रसाद साहब को। डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से आपको, हमें और सामेईन को बताया कि वायरल इन्फेक्शन कितना ख़तरनाक है और वायरल इन्फेक्शन से बचना कितना ज़रूरी है और किस तरह वायरल इन्फेक्शन का शिकार होने के बाद पूरी फैमिली परेशान होती है। तो सामेईन, अपना ख्याल रखिए और बहुत ज़्यादा एहतियात करिए ताकि आप इन वायरल इन्फेक्शन से बचे रहें। दोस्तों, और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जाकर।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 एफएम पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। और अब नैरंग प्रोग्राम में आपको हम पेश कर रहे हैं आपके लिए गीत सुरीले गाते जा, जिसमें आप सुनेंगे खूबसूरत फिल्मी नगमे। तो आइए नगमों के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। प्रोग्राम का नाम है गीत सुरीले गाते जा। दोस्तों, अभी जो गीत आपने सुना वो फिल्म जो जीता वही सिकंदर का था, जिसे गाया था उदित नारायण और साधना सरगम ने। इस गीत के बारे में आपकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी। 92 का ये गीत बहुत ही मकबूल रोमानवी नगमा है, और अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो इस फिल्म में जहाँ एक तरफ तफरी है, वहीं एक तरफ ये दिखाया गया है कि एक लखंडरा, एक खलंडरा और लापरवाह लड़का यानी आमिर खान किस तरह अपने ख़ानदान, अपने फैमिली का ख्वाब पूरा करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ख्वाब ज़रूरी हैं, और उस ख्वाब का पीछा करना, हर एक को चाहिए कि वो अपने ख्वाब का पीछा करे और उसका ताकुब करे, ताकि वो एक नई मंजिल पा सके और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नगमों के सफ़र में और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको और इन नगमों के ज़रिए आप माजी के झरोकों में झांक भी रहे होंगे। अभी जो आपने गीत सुना, ये फिल्म मेरे सनम से, और इसे गाया था आशा भोंसले ने। दोस्तों, नज़रें इंसान की पीछा करती हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और अगर बात मोहब्बत की हो तो फिर क्या कहना। किसी शायर ने कहा है, तुम्हारी आँखें उन आँखों की बात करती हैं, तुम्हारी आँखें उन आँखों की बात करती हैं, गरीब हो गए जिनकी तलब में शहजादे।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, अभी जो आपने गीत सुना वो फिल्म नया दौर का गीत था और नया दौर अपने ज़माने की बहुत मशहूर और क्लासिक फिल्म। आपको याद अगर होगा तो इसमें बहुत सारी ऐसे नगमे हैं जो इंसान को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। इस गीत के बोल लिखे थे साहिर साहब ने और मौसीकी दी थी ओपी नैयर साहब ने। नगमों के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये नगमा।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी गीत। दोस्तों, मोहब्बत में रूठने और मनाने का सिलसिला लगा रहता है और उसका एक अलग लुत्फ भी है। मोहब्बत तो छोड़िए, आम जिंदगी में भी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो ये रूठने मनाने का सिलसिला लगा रहता है और इसकी एक अलग खूबसूरती भी है। किसी शायर ने कहा है कि शिकायत ही से मिलते हैं मोहब्बत के मज़े पे हम, शिकायत ही से मिलते हैं मोहब्बत के मज़े पे हम, मोहब्बत जितनी होती है शिकायत बढ़ती जाती है। अभी ये गीत आपने सुना फिल्म आरजू से, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। तो आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जामे सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, अभी जो गीत आपने सुना वो फिल्म तीसरी कसम से लिया गया था और इसे गाया था मुकेश कुमार ने। दोस्तों, जब से दुनिया बनी है दुनिया में उसी के साथ गम है, खुशी है, ख्वाब है, मिलना है, बिछड़ना है, ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। लेकिन हमें ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिव होके गुजारना होगा और अपने मुश्किल हालात में भी डटे रहना होगा। जाहिर है कि पॉजिटिव सोच ही आपको आगे ले जा सकती है। अगर हिम्मत हार जाएं तो बहुत सी मुश्किलें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। तो हम इसका अहद करेंगे कि हम ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिव होके गुजारेंगे। दोस्तों, नगमों का ये सफ़र जारी है और इस सफ़र में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप गीत सुरीले गातिजा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी जो गीत आपने सुना वो फिल्म सीआईडी से लिया गया था और इसे गाया था शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। दोस्तों, पहला पहला प्यार वाकई बहुत ही यादगार होता है और गालिब का ये शेर भी मुझे याद आ रहा है कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले।

दोस्तों, इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब पेश है प्याम शब, तहरीर पेशकश है जैदी साहब की, लीजिए।

दोस्तों, इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब पेश है प्याम शब, तहरीर पेशकश है जैदी साहब की। लीजिए, समाप्त कीजिए।

0: शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। शोहरत की बुलंदी हासिल करना मुश्किल नहीं, मगर इसे संभालना असल इम्तिहान है। जब इंसान को इज्जत और पहचान मिलती है तो गुरूर का खतरा भी साथ आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि कामयाबी के वक्त भी आजिज़ी और शुक्र को ना छोड़ा जाए। याद रखें, असल अजमत शोहरत में नहीं बल्कि किरदार में होती है। अगर अखलाक बुलंद हों तो शोहरत खुद ब खुद कायम रहती है, वरना वक्ती तालियां जल्द खामोश हो जाती हैं।
1: दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आपने प्रोग्राम नारंग में अलग अलग प्रोग्राम सुने, और इसी पैगाम शब में इस खूबसूरत पैगाम के साथ ही नारंग इख्ताम पजीर होता है। अगली बज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

दोस्तों, अब से कुछ देर बाद ठीक 11 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज

0: नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land cover.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके

0: से देखते हैं। चूंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है, और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
0: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर।

बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत तो उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में
डोमेस्टिक ट्रैवल पड़ेगा।

0: उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है, जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है, और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे, जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल

0: कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक, सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सोल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं,
1: जी
0: जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उस सूली पर लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा, ये 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफ्रेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जेन अल्फा होगी, बीटा होगी, जेन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे। जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति

0: की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी। और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पांख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शति पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर काकी श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाएं, इसके लिए कंपटीशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के

0: जीवन का योग हिस्सा बनाए और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ाए। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश
1: जी
0: के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी
0: होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय

0: और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसे कैसे भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन में ताप के लिए। पहला गीत फिल्म रेशमा और शेरा से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: ये गीत था फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म साजन से।
1: रेशम की डोरी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।

0: उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said, people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: जमीन हैंड ओवर करने का काम कर दिया.
3: द वर्क ऑफ हैंडिंग ओवर द लैंड हैज बीन कंप्लीटेड. सो फार वी हैव हैंडेड ओवर लैंड कवरिंग

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आपने सुना अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। मौसम सुहाना हो और वीकेंड साथ हो तो हर पल में एक अलग ही मिठास खुल जाती है। दिल बेवजह मुस्कुराने लगता है और जिंदगी कुछ और हसीन लगने लगती है।

ओ सनम, बस यही ख्वाहिश है कि हम दोनों का साथ यूं ही बना रहे। वक्त चाहे कितनी ही करवटें बदले, जिंदगी हमें कितने ही इम्तिहानों से गुजारे, मगर हमारे बीच का अपनापन कभी कम ना हो। हर सुबह तेरी मुस्कान से शुरू हो और हर शाम तेरी बातों की मिठास मिठल जाए। आपने सुना त्रिशूल फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

छोटी छोटी तकरारें रिश्ते को कमजोर नहीं करती, बल्कि अगर उनमें अपनापन और समझ हो तो वही रिश्ते को और गहरा बना देती हैं। रूठना भी एक एहसास है और मनाना भी एक प्यार भरा इजहार। आखिर मोहब्बत का मजा ही क्या अगर कभी कोई शिकायत ना हो और उसे दूर करने की मीठी सी कोशिश ना हो। लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना था, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

तुम्हारी कसम फिल्म का गाना आपने सुना, मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद तक्षी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 22 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा।

अभी आपने सुना चरित्रहीन फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। जी हाँ, दिल से दिल मिलने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हर मुलाकात यूं ही नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त की किताब में पहले से लिखे हुए लगते हैं। कभी किसी की बात में अपनापन मिलता है, कभी उसकी खामोशी भी अपनी सी लगती है। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं, बिना ज्यादा कहे एहसास बढ़ने लगते हैं, तो लगता है कि इस जुड़ाव के पीछे कोई अनदेखा सा कारण है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग भीड़ में भी खास बन जाते हैं और उनकी मौजूदगी दिल को सुकून देने लगती है।

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। जगजीत सिंह ने इसमें संगीत दिया। रिश्ता ऐसा हो जिसमें दिखावा ना हो, बस अपनापन हो, जहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं बोलें और साथ होने का एहसास हर पल दिल को छूता रहे।

दूरियां फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। तुम्हारे आने के बाद जाना कि कुछ लोगों की मौजूदगी जिंदगी को बदल नहीं देती, बल्कि उसे एक नया अर्थ दे देती है। अब हर खुशी थोड़ी और खूबसूरत लगती है और हर पल में एक अपनापन सा महसूस होता है।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG

0: परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि कृषि विपणन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों का कड़ा विरोध किया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय दल शामिल था। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, "The growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation." He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisations, or DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said, "People are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border." The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France tomorrow, the spotlight is on India's remarkable start.

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

जन्म जन्म के फेरे, इस फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और रफी की आवाज में भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने। ये मीठी तान आज भी कानों में पड़ते ही दिल को सुकून दे जाती है, जैसे कोई अपना बहुत दिनों बाद हाल पूछने आ गया हो। पुराने गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जज्बातों का खजाना है, जो हर दौर में दिलों को जोड़ते रहते हैं।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। पुराने गीतों की मीठी तान दिल के किसी कोने को छू जाती है। इनमें शोर नहीं है न दिखावा है, बस सादगी, एहसास और मोहब्बत की खुशबू। कभी किसी सुर में चांदनी रात उतर आती है तो कभी किसी धुन में बिछड़ने का दर्द। उन गीतों को सुनकर लगता है जैसे बीते हुए लम्हे फिर से मुस्कुरा उठे हों और यादों की महफिल सज गई हो।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफी आज़मी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। पुराने गीत की दर्द भरी पुकार आज भी दिल के तार छेड़ जाती है। इन सुरों में बिछड़ने की कसक है, इंतजार की बेचैनी है और अधूरी मोहब्बत की कहानी है। जब कोई पुरानी धुन हवाओं में खुलती है तो बीते हुए लम्हे आंखों के सामने आ खड़े होते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ नम आंखों के साथ।

अजी बस शुक्रिया फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ में फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

वक्त हुआ है 1:27, वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बड़ी बहन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया हुसन लाल भगत राम ने।

परवरिश फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया दत्ताराम वाटकर ने। अपने जज्बात बयान करने का सबसे सीधा और खूबसूरत जरिया ये पुराने गाने हैं। जो बातें कभी लफ्जों में नहीं कही जा सकी उन्हें इन गीतों ने सुरों में ढालकर दिल तक पहुंचा दिया। कभी मोहब्बत का इजहार बनकर, कभी इंतजार की आहट बनकर, तो कभी जुदाई की कसक बनकर, ये गाने हर एहसास को आवाज दे देते हैं।

एक सपेरा एक लुटेरा, रफ़ी की आवाज़ में आपने गीत सुना। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया उषा खन्ना ने। कितना दर्द छलकता है इन गीतों में, जैसे किसी ने अपने दिल की सारी कसक सुरों में पिरो दी हो। कहीं बिछड़ने का गम है, कहीं अधूरी मोहब्बत की टीस, तो कहीं किसी के इंतज़ार में गुजरती लंबी रातों की दास्तान।

मतारी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। बड़ी बड़ी बातों को कितनी आसानी से कह दिया करते हैं ये पुराने गाने। जो बातें कभी किताबों में समझ नहीं आती वो दो चार पंक्तियों में दिल तक उतर जाती है। मोहब्बत हो, इंतजार हो, जुदाई हो या जिंदगी का कोई फलसफा, पुराने गीत बिना शोर किए गहरी बात कह जाते हैं।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जी हाँ, इन गीतों के अल्फाज सादे होते हैं मगर मायने बहुत गहरे। यही वजह है कि बरसों बाद भी इन्हें सुने तो लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े सलीके से कह रहा हो। पुराने गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसासों की ऐसी जुबान है जो हर दौर में समझी जाती है और जाती रहेगी।

बादल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। हल्के फुल्के दिल को छू लेने वाले पुराने गाने जिंदगी की भागदौड़ में एक मीठी सी राहत जैसे लगते हैं। ना इनमें शोर होता है ना बनावटीपन, बस सादे अल्फाज, मधुर धुने और सच्चे एहसास।

0: जबक फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

चितचोर फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और येशुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। रात सुरमई हो, हवाओं में नमी खुली हो और कहीं दूर से कोई मधुर धुन कानों में उतर आए, ऐसे में दिल चाहता है कि कोई अपना पास आकर बैठ जाए, दूरियों के सारे फासले मिट जाएं और खामोशियों में भी मुलाकातों का एहसास मिलने लगे।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, फिल्म से आपने गाना सुना। हेमलता की आवाज में रविंद्र जैन ने इसको लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। जिंदगी की धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर प्यार की छांव साथ हो तो सफर आसान लगने लगता है। अपनापन, विश्वास और स्नेह की ये छांव यूं ही बनी रहे, यही हर रिश्ते की सबसे खूबसूरत दुआ है।

सौदागर फिल्म का गाना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत दिया रविंद्र जैन ने। फूलों की महक हो, चांदनी की नरमी हो या किसी की सादगी में छिपी रौनक, दिल हर उस एहसास की ओर खिंच जाता है जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दे।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, जैसे कोई मीठा सा ख्याल हर पल साथ चलता हो। हवा भी कुछ अलग लगती है, मौसम भी सुहाना लगता है, और हर छोटी सी बात में एक अनजानी सी खुशी झलकती है। शायद दिल ने किसी खूबसूरत एहसास को अपना लिया है, तभी तो आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गज़ल सुनी तलत अज़ीज़ की आवाज़ में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। जी हाँ, ये साथ कितना प्यारा है, जैसे ठंडी हवा का एक नरम झोंका, जैसे बरसों से बिछड़े किसी गीत की मधुर धुन। तेरे साथ चलते हुए रास्ते आसान लगते हैं और हर पल में एक नई खुशी का एहसास जाग उठता है। जिंदगी की भीड़ में बस यही लगता है कि तेरा साथ यूं ही बना रहे, क्योंकि यही मेरे लिए दिल का सबसे खूबसूरत सहारा है।

वक्त हुआ है 2:42 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

साथ साथ फिल्म से आपने ये गजल सुनी, जगजीत सिंह की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। तुम्हें देखकर लगा जैसे किसी लंबे सफर के बाद मन को एक सुकून भरा ठिकाना मिल गया हो, अचानक सब कुछ थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा हो। हवाएं, मौसम और वो पल जो अब तक बस यूं ही गुजर जाया करते थे, ऐसा लगा जैसे दिल के किसी कोने में छिपी एक पुरानी धुन फिर से बज उठी हो और उसकी मिठास देर तक साथ बनी हुई हो।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा मीर तकी मीर ने और इसका संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना गोयल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात की ये खामोशी भी अजीब होती है। दिन में जो बातें सुनाई नहीं देती वो रात के सन्नाटे में धीरे से दिल तक पहुंच जाती हैं। तो आइए आज की इस शांत रात में कुछ बातें करते हैं, कुछ यादों को छुएंगे और कुछ पलों को बस महसूस करेंगे।

नमस्कार दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, शोर और जिम्मेदारियों के बाद अब वक्त है कुछ पल अपने लिए चुरा लेने का। जी हाँ, ये वक्त है कार्यक्रम हमराही का और मैं हूँ आपके साथ आज रात की हमसफर अर्चना गोयल। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म महबूब की मेहंदी से। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। दिल सवाल करता है, रात जवाब देती है। कई लोग इस वक्त अपने घरों में होंगे, कोई नींद के आगोश में, कोई किताबों के साथ तो कोई किसी की यादों के साथ, और कोई सिर्फ खुद के साथ। आज अगर आपके मन में कोई अधूरी बात है तो उसे थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दीजिए। ये रात है ना, उसे संभाल लेगी।

दोस्तों, रात हमें सिखाती है कि हर अंधेरा डरावना नहीं होता। कुछ अंधेरे सुकून भी देते हैं, जैसे आसमान के सितारे दिन में नहीं दिखते। वैसे ही कई बार हमारी ताकत भी मुश्किल समय में ही नजर आती है। एक छोटी सी बात हर दिन पूरा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खत्म होकर हमें कुछ सिखा जाए, ये जरूरी है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने धरती फिल्म का गीत सुना। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28 और 57 सेकेंड।

कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका असर वही रह जाता है और रात उन यादों को आवाज़ दे देती है। अगर आपका भी किसी की याद आ रही है तो उसे रोकिए मत। ये यादें ही रिश्तों की एक खूबसूरत भाषा होती है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, फिल्म थी बेटी। और अब कुछ पंक्तियाँ इस खूबसूरत सी रात के लिए। खामोशियों में भी आवाज़ें होती हैं, बस सुनने वाला दिल चाहिए। रात ने पूछा, क्यों जाग रहे हो? हमने कहा, कुछ सपने अभी बाकी हैं, जो बातें दिन में न कर सके उन्हें रात ने चांद को सौंप दिया।

लेकिन हर दिन याद करना होता है। वो साथ चलना नहीं लेकिन दूर रहकर भी साथ निभाना होता है, और शायद यही सबसे शांत और सबसे गहरी मोहब्बत होती है।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म में ये आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। हर प्यार को शब्द नहीं मिलते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बातें कम एहसास ज़्यादा होते हैं। वो हर दिन हाल पूछना नहीं,

दोस्तों, कुछ लोग हमारी कहानी में आते हैं लेकिन मंजिल नहीं बनते, फिर भी उनकी जगह कोई नहीं लेता। और अजीब बात यह है कि खामोश मोहब्बत शिकायत नहीं करती, वो बस दुआ बन जाती है। जहाँ भी रहो, खुश रहो, शायद यही सबसे

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत था फिल्म शोर से। रात और मोहब्बत का रिश्ता पुराना है, दिन में लोग मिलते हैं, रात में यादें। कई लोग इस वक्त शायद किसी की प्रोफाइल नहीं बल्कि उनकी यादें देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अगर वो साथ होता तो ये रात कुछ और होती। वाकई दिल के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते।

धीरे धीरे इस सफर को यहीं रोकते हैं। आज की रात अपने मन को थोड़ा हल्का कीजिए, पुरानी बातों को माफ कीजिए और

आने वाले कल पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। अगर किसी की याद आई है तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हर याद किसी खूबसूरत पल का सबूत होती है।

और अब मैं आपकी हमराही अर्चना गोयल फिर मिलेंगे एक और रात कुछ और एहसासों के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवाज। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामूहिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतुअंग अंकिमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथन संगी हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला जापान के विश्व चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 4:11 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार। एक नए दिन की पहली सुबह के साथ आपका स्वागत है। रात की चुप्पी अब धीरे धीरे विदा ले रही है और आसमान पर उजाले की एक पतली रेखा दिखाई देने लगी है। ये समय है ठहर कर अपने भीतर झांकने का और नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने का। तो शुरुआत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। आज की भोर की बेला सिर्फ सुबह नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और मुस्कुराहट भी लाई है। इस उम्मीद विश्वास में अगर ईश्वर की प्रार्थना भी शामिल हो जाए तो क्या बात है। सुनते हैं भक्ति से भरा गीत।

कभी महसूस किया है सुबह की हवा कुछ अलग होती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक सुकून होता है। सुबह हमें सिखाती है कि हर दिन नया हो सकता है। पेड़ हर दिन नई हवा देते हैं, सूरज हर दिन नई रोशनी देता है, तो क्यों ना हम भी अपने मन में नई सोच क्यों ना लाएं।

दोस्तों, कई बार हम जीवन में बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन सुबह हमें याद दिलाती है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में भी होती है। एक कप चाय, खिड़की से आती हवा, घर वालों की मुस्कान और ये एहसास कि हम एक और नया दिन देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है, उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। दोस्तों, अगर मन में कोई बोझ हो तो सुबह उसे थोड़ा हल्का कर लीजिए। हर समस्या का समाधान उसी दिन नहीं मिलता, लेकिन हर सुबह हमें उसे देखने का नया नज़रिया देती है। आज किसी अपने को एक प्यारी सी बात कहिए, किसी का हाल पूछिए या खुद के लिए 5 मिनट निकालिए। कभी कभी सबसे ज़रूरी मुलाकात खुद से होती है।

दोस्तों, जब सुबह होती है तो मन भी शांत होने लगता है। 2 मिनट आंखें बंद करके बस इतना कहिए, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो आने वाला पल है उसके लिए विश्वास। और यही विश्वास जीवन को हल्का बनाता है।

कल कैसा था ये अब कहानी बन चुका है, आज कैसा होगा ये हमारे विचार तय करेंगे। अगर मन में कोई अधूरापन है तो उसे आज पूरा करने की शुरुआत कीजिए। अगर कोई सपना रुका है तो आज उसे फिर आवाज दीजिए। याद रखिए, सूरज हर दिन इसलिए नहीं निकलता कि दिन बदल गया, वो इसलिए निकलता है कि हम बदल सकें।

दोस्तों, दिन भर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या आप खुद से मिले हैं कभी? सुबह का समय यही मौका देता है, कुछ पल अपने साथ बैठिए, सोचिए क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्या चीज़ आपको थका देती है। मन की सफाई भी उतनी ज़रूरी है जितनी घर की। आज का विचार है कि धीरे चलने वाला इंसान भी बहुत दूर तक पहुंच सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए।

और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस सुबह की ताजगी को अपने साथ रखिए। आज का दिन मुस्कुराकर शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और की मुस्कुराहट की वजह बन सकती है। मैं आपकी साथी अर्चना गोयल आपसे फिर मुलाकात होगी भोर सुहाने के अगले सफर में, आपसे कुछ देर बाद 5:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं।

0: तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jayashankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Polo flagged tanker MT Sedabero off the coast of Oman.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। सुबह की इस कोमल बेला में आपका स्वागत है। कार्यक्रम भोर सुहानी के साथ मैं आपकी हमसफर अर्चना गोयल, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वो समय है जब दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस शांत समय में अपने सपनों को नया आकार दे रहे होते हैं। कहते हैं कि सुबह सिर्फ समय नहीं होता, एक एहसास होता है, और आज इसी एहसास को महसूस करने के लिए हम और आप साथ हैं।

देखिए ना, बाहर पेड़ बिना शिकायत के खड़े हैं, हवा बिना शोर के चल रही है, आसमान बिना रुके रंग बदल रहा है। प्रकृति हर सुबह एक बात सिखाती है कि जीवन को सहज बनाइए। सब कुछ अपने समय पर खिलता है, क्योंकि यही मौसम होता है। निधिया से

अगर आपके पिछले कुछ दिन कठिनाई में बीते हों तो ये सुबह आपके लिए एक संदेश लाई है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, रात चाहे कितनी भी लंबी हो सुबह आती है। इसलिए आज अपने लिए बस एक काम कीजिए, मुस्कुराइए बिना वजह।

वाकई बहुत ही सुंदर गीत, मुस्कुराते रहो और गम छुपाते रहो। दोस्तों, सुबह की ये नरम धूप, ये शांत हवा, एक कप चाय, खिड़की से आती हल्की रोशनी और मन में कोई जल्दी नहीं, सुबह शायद इसी का नाम है। और ये कुछ पल उम्मीद है कि आपका दिन सुंदर बनाएंगे।